0: You are listening to NYC Radio Live. I'm here with Bhaskar Ghosh from the Society of Arts and Culture of South Asia, big force behind the Ragas Live Festival for more than half a decade, and Mustafa Abu Mohammed of the legendary group Farid Ayaz and Abu Mohammed Kowal, and he is on his first tour with his own group, Mustafa Abu Mohammed Kowal, just flying in on it's been 17 dates in the U.S., very well received. Mustafa, thanks so much for joining me and Bhaskar.
1: Thank you, David and the Bhaskar sir, for inviting me here. Thank you.
0: It's our pleasure. So the first question I think will be very helpful for our listeners to understand the context, to understand what Kowali is, can you tell us a few words about what Sufi means? And if it's helpful, you can speak with Bhaskar and Hindi.
1: Dekhe, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aisa hai ki, every religion has a meditation system. You know, to inko samjhaiye ki har religion mein, har mazhab mein, har dharm mein, ek meditation ka concept rakha gaya hai. To isi tarike se Sufism ko hamare jo awliya Allah hain, jo hamare saint hain, jo hamare teachers hain, un logon ne ek proper way mein start kiya after Islam. Aur Sufism kuch is tarike se start hua ki India mein, yani subcontinent mein, Bharat mein, shuru se ek music culture ka ek rivaj tha. To jab ye Sufi aur ye saint travel karke aur via Turkey, via Saudiya, via Turkmenistan, ye log travel karke Hindustan aaye, to wahan aake inhone ek mahol dekha ki yahan ke log mosiqi ke sunne ke bahut shaukeen hain. To ushi hisab se in logon ne Sufism ka ya mazhab ka ek prachar shuru kiya jiska naam in logon ne Sufism rakha.
2: Let me just shukriya Mustafa ji. So David, every religion and religious practice in the world has an aspect of meditation. And so Mustafa ji started with that comment. And then, and after Islam came into being, Sufism embodies the spiritual and meditative aspect of Islam. That's one thing. Mustafa ji, aap jab response denge thoda short kyunki fir main translate karne ke time mein bhool jaunga aap
1: thoda sorry
2: mat boliye ji zarur real time kar rahe hain na
1: ha mujhe andaaza tha thoda sa mujhe short karke
2: mujhe tab kuch galti ho jayega to I don't want
1: any and then
2: he said something very profound that historical forces after Islam came to India and the performative aspect, the aspects of music which are very common in the subcontinent as part of religious spiritual practice also started taking shape in the Sufistic expression of Islam in India, in the subcontinent, all over. And as the Sufi saints started traveling from the Middle East, whether it was from Morocco, from Algeria, from all these famous saints, right from like 1000 AD, 1100 AD. By the way, David, one of the big saints settled in the eastern part of Bengal called Sylhet, and we can talk about that later when we meet. They, as they were coming and presenting the practice and gaining followers, music became a very important part of that. And that is a very unique South Asian concept. That's something that he's actually pointing out. It's a very syncretic thing where this practice of music as the spiritual and meditative practice of Sufism gained tremendous gained tremendous following. Okay, back to you guys, David and Mustafa okay. Ji. And I will try my best to translate yes. because Mustafa Ji is covering very profound and long histories in very few sentences. So I will try to do justice to it.
0: Yeah, I heard something about Turkmenistan and maybe Uzbekistan.
1: Uzbekistan, Uzbek, the language is actually, I want to talk you on the Sufism because the Sufism ancestor, he's the name of Khaja Mohinuddin Chishti. He's also coming from the Turkmenistan, and our ancestors comes with him from that side, that part. Or इनको समझाइएगा कि जब वो आए उन्होंने आकर एक माहौल यहाँ का देखा कि यहाँ पर लोग जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज मौसिकी में सुनना पसंद करते हैं एक लहन में एक रिदम में तो उन्होंने उसी तरीके से जाप कह लें या दोहराना कह लें उसी तरीके से अल्लाह का उसकी वहदानियत का उसके नामों का जाप शुरू किया दैट्स कॉल्ड समा
2: ये जाप क्या होता है जनाब मुस्तफा जी
1: जाप यानी कि जपना किसी जपना, नाम को दोहराना से
2: ओके ओके ओके ही इज सेइंग So the lineage of Sufi saints in North India comes from two major saints. One is Mohiuddin Chishti. The word Khwaja is a prefix, which is an honorific.
1: Yeah.
2: Khwaja Mohiuddin Chishti, who their lineage belongs to. Mustafa Ji's lineage belongs to that lineage. It's likely his ancestors came from the Mohiuddin Chishti lineage, from the क्या तुर्कमेनिस्तान से था मुस्तफा जी
1: जी तुर्कमेनिस्तान
2: ही केम फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान जस्ट एफवाईआई डेविड द अदर ग्रेट सेंट इज ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरू वाज अ फॉलोअर ऑफ निजामुद्दीन औलिया सो लाइक दैट्स समथिंग दैट ही कैन टॉक अबाउट व्हिच इज दिस बिग दरगाह इन दिल्ली एंड एज एंड देन मुस्तफा जी मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एज दीस प्रैक्टिशनर्स ऑफ सूफिज्म वर कमिंग टू इंडिया They started picking up on the Indian practices of japa, japna, which is, you know, jap is how to chant the names, express in music. And something I'm also learning from him real time here is, they then started picking up the practice to reach more followers and kind of steep into the South Asian practice of japam, which is the whole chanting practices of different sub-religions of India that was already there. And that's how the initial structures of Qawwali was developed. That's kind of very brief summary of what you were saying. Mustafa Ji, David and Mustafa, back to you guys.
0: Thank you.
1: Thank you, Bhaskar.
0: So how does Amir Khusro fit in with the birth of Qawwali?
1: That's good question, and the very popular question in our field. Hazrat Amir Khusro Rahmatullah Alayh, Tajir bhi the, yani ke trader bhi the, aur ambassador bhi the. He was a professor in each and every part of humanitarian, like a doctory, मतलब कि अमीर खुसरो बहुत सारी चीजों में महारत रखते थे तो हजरत अमीर खुसरो अपने पीर के पास आने से पहले पहले काफी सारी चीजों में महारत रखते थे और किसी ने उनको सजेस्ट किया कि जाएं आपने सारी दुनिया घूमी है एक बार हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में भी जाकर अपना कुछ इल्म हासिल करने की कोशिश करें ये समझाएं पहले इनको
2: जनाब मुस्तफा जी अमीर खुसरो के जन्म क्या दिल्ली में हुई थी या वो दूसरे कहां से आए थे
1: हजरत अमीर खुसरो का जन्म जो है इसमें दो तीन चार वो हैं इख्तलाफ हैं
2: ओके
1: कुछ कहते हैं कि हजरत अमीर खुसरो का जन्म बदायूनियों में हुआ, बदायूनी जो जगह है यूपी में, कुछ कहते हैं कि वहां हुआ, और ज्यादातर जो प्रेडिक्शन राइट वे में जाती हैं तो ये पता लगता है कि हजरत अमीर खुसरो ताजिक थे, ताजिकिस्तान के.
2: Okay, so I was asking him about Amir Khusro. He says there are many stories about where he was born. One story is that he was born in one of the North Indian areas called Badayuni, which also happens to be the name of a very popular historian, but that's a separate issue. The other story is that he was actually born in Tajikistan. Coming back to Amir Khusro, seems like he was a multifaceted, multidimensional human being. He was a trader, he was an investor, but it seems like he was also a highly educated practitioner of many different things, including maybe even medicine. And he was advised by his friends that, and he apparently traveled a lot, and he got advice to, during his travels, to also go visit the great saint, Pir Nizamuddin Aulia, who was in Delhi, right? And that's how their paths overlapped. मुस्तफा जी आपको एक प्रश्न पूछूं
1: जी.
2: तो अमीर खुसरो जो कंपोजिशंस किया वो तो सब फारसी में थे
1: जी.
2: जनाब अगर ताजिक भी हो या बदायूनी की हो
1: जी.
2: ये उनके टाइम तक फारसी हैड बिकम, फारसी बहुत ही चल रहा था, कोर्ट्स भी चल रहा था
1: जी.
2: तो इवन दो ही माइट हैव बीन ताजिक, डेविड ही आई मीन थिंग्स दैट वी आई डोंट नो अथॉरिटेटिवली. It turns out by then, Farsi, Persian, had taken extensive root in North India, based out of Old Delhi and all the cultures of the kings and the emperors and the court languages, and also the language for the arts, rather than Arabic. It's an important thing that Quran is in Arabic, but the arts, court language, judicial language was all Farsi by then.
1: Deep.
2: So I was just asking him that if it is indeed true that he came from Tajikistan, but he became this amazing poet in Farsi also. I don't know the details. That's kind of a scholarly thing. So anyway, back to you, Mustafa ji.
1: Ji, bilkul. Dekhe,
2: David, is there anything specific you want to ask about Amir Khusro, David? Is there some other question?
0: Well, the relationship with the birth of Qawwal,
1: Birth of Qawwal, okay.
2: Yeah, Amir Khusro se Qawwali ke janam kaise hua, unka role kya tha, ye pooch raha hoon.
1: Ji. पहले मैं एक बात क्लियर करूं कि हजरत अमीर खुसरो ने जो फारसी में कलाम लिखे और उनकी तरतीब बनाई और उनको एक बीट सर्कल में दाखिल किया, बीट सर्कल में दाखिल किया, टेम्पो बनाया उसका. तो मैंने पहले एक बात मैं कर चुका हूं कि हजरत अमीर खुसरो एम्बेसडर थे, ट्रेडर थे, फाइनेंशियल चीजों में थे, मतलब कि उनका सारी सब कॉन्टिनेंट की तरफ भी और अपर साइड ऑफ ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदीया एंड जो जो जिस जिस जगह से जो जो कॉन्टिनेंट बने हुए इन सब जगह जाना था. तो उस वजह से इनको एक बेनिफिट था कि जो जबान का बेनिफिट होता है, बोली, वो जबान के बेनिफिट इन्होंने हर जगह से हासिल किए. फारसी में भी इन्होंने कलाम लिखे, उर्दू में भी कलाम लिखे, इन्होंने पूर्वी में भी कलाम लिखे, अरबी में भी कलाम लिखे, एंड मेनी ऑफ लैंग्वेजेस, तुर्किश में भी, ताजिक में भी कलाम लिखे इन्होंने.
2: ओके, सो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग. सो अमीर खुसरो इन एडिशन टू बीइंग अ ट्रेडर इन्वेस्टर वाज आल्सो एन एंबेसडर एंड ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली इन द ऑल द वे इन द मिडल ईस्ट, यू नो, इन ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सऊदीया, मोरक्को, अफगानिस्तान. And he had a facility for languages also. So not only did he compose in Farsi, he also composed in Urdu, he also composed in Turkish, he also composed in Tajik and other languages. So that is also a significant fact that Mustafa ji is pointing out.
1: And now come to the point, jo baat hamari ho rahi thi.
2: I forgot. Amir Khusro ji was very instrumental in bringing in the concept of rhythm and beats and cycles.
1: Absolutely.
2: That is something he mentioned the language part and travels part. He also started talking about the fact that as the performative side of the arts and the structure of Qawwali, apparently he was revolutionary in bringing in beat cycles and all of that stuff. Haan, haan, haan, boliye Mustafa ji.
1: Ji. इनका सवाल था कि कव्वाल का जन्म कैसे हुआ या कव्वाल कैसे बना. तो मैंने बताया कि हजरत अमीर खुसरो अपने पीर, अपने टीचर, अपने गुरु के पास जब चले गए तो उनके पास वो सूफीज्म की जो तालीम, उनके पास वो सूफीज्म की नहीं थी. पहले जबानों की, लोगों को समझने की, पब्लिक इंटरेक्शन की तालीम पहले थी उनको. लेकिन ये चीजें जो मेडिटेशन जो कि एक मजहब में या फिर किसी चीज में होती है, वो चीज उनको हजरत निजामुद्दीन औलिया से हासिल हुई. तो वो चीज उन्होंने वहां से ली और उसके बाद अपने पीर के अहकामात पे दुनिया को भी साथ लेते हुए दीन को उन्होंने और दुनिया को, यानी कि मजहब को और दुनिया को उन्होंने साथ लेके चलने की एक okay. बहुत अच्छी कोशिश की.
2: सो ही इज मेकिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इवन बिफोर Amir Khusro ji became a follower of Nizamuddin Aulia, Peer Nizamuddin Aulia, you know, one of the two great saints. Again, to repeat, Mustafa ji's ancestry and lineage comes from Khwaja Mohiuddin Chisti. And Amir Khusro ji was a follower and disciple of Khwaja Nizamuddin Aulia. Okay.
0: And we're talking like 1200, something like that, 1300s.
2: Mustafa ji, timeline kya
1: hai? उनका डिस्टेंस पूछ रही है कि
2: टाइमलाइन की कौन सा टाइम विंडो में अमित खुसरो जी और
1: निजामुद्दीन औलिया 1280 एंड 1285 यही वक्त है.
2: ओके, सो बाय द टाइम ही बिकेम अ डिसिपल एंड फॉलोअर ऑफ ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ही हैड ट्रैवल्ड अ लॉट ऑलरेडी, ही हैड पिक्ड अप लैंग्वेजेस, ही वाज प्रोबब्ली एन एंबेसडर, ही वाज इन एंड हिज द इंपॉर्टेंट पॉइंट मुस्तफा जी मेड इज ही वाज ऑलरेडी वेरी वेल वर्स्ड इन talking to many different kinds of people. So the outside world, he was extremely adept. He was probably, you know, highly sophisticated man, played in all the power structure, could speak to. Then he comes to Amir Khusro ji, Khwaja Nizamuddin Aulia. And that's where his strong introduction to meditation and to the language of the sacred and how to, and you know, the values and the behavior in the spiritual side starts developing. So he's kind of this bimodal character, heavily in bringing in language and all this facility from outside, and now becoming much more entrenched and kind of adopting the language of spirituality and the language of that ecosystem. Haan, boliye Mustafa ji.
1: To ye tha ki Hazrat Nizamuddin Auliya se Amir Khusrau ke milne ki baat. उसके बाद में अच्छा ये दौर है अलाउद्दीन खिलजी का. अलाउद्दीन खिलजी का दौर है. तो बहुत सारी अफवाहें इस बात से गर्दिश कर रही हैं कि हजरत अमीर खुसरो शायद अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी शायर थे.
2: ओह, सो देयर वाज दिस द एम्परर इन दिल्ली नेम्ड अलाउद्दीन खिलजी एंड दिस इज ड्यूरिंग दैट टाइम. And some of the stories or the theories proposed by people is that Amir Khusro also becomes a court musician or court poet of Alauddin Khilji. हाँ बोलिए मुस्तफा जी.
1: तो ये अफवाह थी और अभी कुछ इस पे कुछ बातें भी चल रही हैं. तो ऐसा बिल्कुल नहीं था.
2: And he said that is not true.
1: Yeah, हजरत अमीर खुसरो अपने टीचर, अपने गुरु के आस्ताने पे, अपनी उनकी खानका पे हमेशा रहते थे और किसी दरबार में जाने के वो मतलब के उसमें जाने के वो हामी नहीं थे.
2: Oh my goodness, so he's making a very strong point saying this is completely untrue. He was not aligned with the emperor and not part of the court. He was very much a part of the Nizamuddin Aulia ecosystem. हाँ बोलिए सर.
1: एक वक्त आया कि जब अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक बहुत बड़े साउथ इंडिया के पंडित और गायक तशरीफ लाए.
2: सो ग्रेट साउथ इंडियन सिंगर केम टू द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. हाँ बोलिए. उसके बाद
1: वो आए और उन्होंने आकर संस्कृत में एक बहुत बड़ा सवाल किया जो कि 28,000 जुमलों पे मुश्तमिल था. उन जुमलों पे बना हुआ था.
2: Okay, jumlo ke matlab mujhe
1: words.
2: So this great Sanskrit scholar comes
1: 28,000 words.
2: Comes to the court of Alauddin Khilji and asks a question. Kya prashna pucha hai ki ye 28,000 words.
1: Sawal, ji ji, prashna.
2: So he asks a question with a passage which has 28,000 words. Haan, uske baad.
1: To us daur mein, kyunki jaisa maine arz kiya ki Hazrat Amir Khusro tamam zabanon ke jaane wale the aur usme Sanskrit bhi shamil thi.
2: So,
1: Sanskrit ko bhi jante the.
2: So what was Mustafa ji say? Lekin ek prashna poochu Mustafa ji. Aap jo bol rahe the ki Amir Khusro ji Alauddin Khilji ke court mein nahi the. The ya nahi the?
1: Nahi the.
2: Okay, so okay, he's going to continue the story. So a Sanskrit scholar comes from South India and then asks this question, which is in a passage of 28,000 words.
1: Yeah.
2: And then what happens, Mustafa ji?
1: वो कोर्ट में मौजूद नहीं थे उनके उनके दरबार में नहीं थे तो बादशाह ने क्योंकि संस्कृत एक पुरानी जबान थी उस दौर के हिसाब से भी बहुत पुरानी जबान थी और मौजूदा हिंदू जो वहां के मौजूद थे उनको भी संस्कृत समझने में बहुत मुश्किल थी
2: हाँ बहुत मुश्किल सो द अदर थिंग मुस्तफा जी इज सेइंग इज इट इज स्ट्रांगली लाइकली दैट अमीर खुसरो जी हैज आल्सो लर्न संस्कृत And then he comes back to the story that this Sanskrit scholar from South India has asked this question. And the Hindus themselves, most of them are not tutored in the formal language of Sanskrit. So it was hard for them to understand it. Mm-hmm. Back to you, Mustafa ji.
1: So Badshah ne ek farman jari kiya ki jao aur pata karo ki ye pandit jo aaye hain ki kya sawal kar rahe hain aur kaun aisa shakhs hai jo is sawal ka jawab de sake.
2: Okay, so then the Badshah takes out a farman, which is like an order, court or the emperor's court order, saying that, hey, somebody has to figure out what is this question this gentleman, this pandit from South India is asking, which has 20,000 words, and sends out an order and I guess propagates that through the city and his kingdom. Uske baad, Mustafa ji?
1: Uske baad, farman ki... ताबीर हुई फरमान को एक्सेप्ट किया गया और उसके लिए तलाश के लिए लोग निकले तो हजरत अमीर खुसरो उस दौर में बहुत पॉपुलर आदमी थे बहुत पॉपुलर शख्स थे बहुत पॉपुलर इंसान थे तो उनको तलाश करने में इतनी कोई मुश्किल नहीं हुई पता चल गया कि वो अपने पीर के दरबार में अपने पीर के खानकाह में मौजूद होते हैं और ये शख्स है जो पंडित गोपाल नायक के सवालों का जवाब दे सकता है
2: So then they tracked down, by then Amir Khusro ji was quite famous and they tracked him down at his Peer's Dargah, meaning Nizamuddin Aulia's Dargah, the temple. And apparently the Pandit's name from South India is Gopal Nayak, the person who asked the question. And then they catch hold of Amir Khusro ji to answer that question. Uske baad, Mustafa ji?
1: Uske baad, apne Peer ki ijazat se, kyunki maine pehle bataya ki Sufi saint जो है उनका मिजाज रूलर से बिल्कुल नहीं मिलता शुरू से सूफी चाहता है कि मोहब्बत की तालीम दे और वो हजरत अलाउद्दीन खिलजी मैं उनका नाम हजरत यूं ले रहा हूं क्योंकि उनके मामलात से भी बड़े गलत रूमर्स लेके दुनिया में फैले हुए तो वो भी एक नेक दिल बादशाह थे और उनके पास हजरत अमीर खुसरो को भेजा गया निजामुद्दीन औलिया की इजाजत से
2: So then they find Amir Khusro ji and he's in the Dargah. He's a follower of Nizamuddin Aulia. And Mustafa ji makes a point that it ji. Should be kept in mind that the Aulias, the Sufi saints, ji. Were not strongly aligned with the power structure of the emperors. Because the way he said it is, Nizamuddin Aulia's, the Sufi saints' way of preaching is through love and kindness and inclusivity. Yes. Probably not true. For the rulers, even if they were fair people. So with Nizamuddin Aulia's permission, Amir Khusro finds his way to Alauddin Khilji's court during the time where somebody has to answer this question. Haan, phir boliye.
1: Sorry, David, I'll take your long time.
0: No, good.
1: Because
0: take your time, please.
1: That's not a story. That's a reality jo hamare bado ne dekhi.
2: So they have been told this story has been handed down from generations. And this is in Mustafaji's telling, this is not a story or a hypothetical thing. This is how it went down.
0: History.
2: उसके बाद क्या हुआ मुस्तफा जी?
1: उसके बाद हजरत अमीर खुसरो बादशाह के दरबार में जाते हैं और वहां जाके बादशाह उनसे कहते हैं कि खुसरो आप इनके सवाल सुनिए और उनके सवालों का जवाब दीजिए. अमीर खुसरो शर्त रखते हैं कि ये बहुत बड़े साउथ के या साउथ इंडिया के बहुत बड़े पंडित और वहां के गवैये हैं, तो मैं इनका सवाल पर्दे के पीछे रह के सुनूंगा.
2: So he says, so he's told that, hey, Gopal Nayak has asked these questions, please answer them. And Amir Khusro agrees, but says that I will listen to his questions from behind a parda, curtain. And then I will proceed to answer. Haan, uske baad?
1: Ji. To Hazrat Amir Khusro unka sawal sunte hain, jo ke Sanskrit mein hota hai. Main thoda sa aapko padhke bhi bata dun.
2: Kya baat hai?
1: अच्छा, इसको जरा इमेजिन करिए, इमेजिनेशन में लाइए कि पंडित गोपाल नायक अपने 9,000 चेलों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ ये दरबारे खिलजी में पढ़ रहे हैं.
2: सो ही हैज ब्रॉट 9,000 ऑफ हिज डिसिपल्स गोपाल नायक टू द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड ही इज रीडिंग दिस 28,000 वर्ड वर्सेस एंड मुस्तफा जी इज आस्किंग अस टू इमेजिन द सिचुएशन. And Amir Khusro ji, there's a curtain on a parda, and Amir Khusro ji is behind that. Haan, boliye.
1: Now, I'm saying, what kind of the music? This thing in the actually in the rag.
2: So where did the music come from, Mustafa ji? Music कहाँ से आया? जो verses, Gopal Nayak का Sanskrit verses, वो क्या? संगीत में सेट था.
1: संगीत में सेट था और उसके अल्फाज ऐसे थे कि गुरड़ धर गिर धर गजा धर सुदर्शन चकर धर जय जय माधु मद सुदनम परम पुरक पातक परनम देद दमद दा मुद्दरम दूती अब अपरम पारक आदर दरनम कमल नयन कृपाल केशु कनस अरी करना करनम बिशु नात मही धरन खल धलन गिरदम गिरपत गोपाल अघम अगूचन निरंजन निराकार सवी साकार सरिष्ट

0: meaning form, God with form and God without form, all of that stuff.
1: Yeah.
0: So it goes into fairly sophisticated stuff about the existence of God and in what form God resides in. Some of the stuff.
1: Kya baat hai sir? Sir, kya baat hai Bhaskar ji? Kya aapne zabardast tarike se samjhaya hai? Kya baat? Thank you. To isme yahi baat thi ki usme wo jab Pandit Gopal Naik aaye to unhone ye bataya ki hamara jo God hai वो शेर की सवारी करता है, सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करता है, यानी उसका मैं मीनिंग थोड़ी सी बता रहा हूँ, आपको तो पता है, इनको थोड़ा समझाइएगा।
0: So he's describing Krishna the God, you know how he rides on a tiger, has this disc called the Sudarshan Chakra, which is like a weapon, how it lifts up this mountain on one finger called Govardhan. All of these are stories around Krishna that are often in verses. हाँ बोलिए।
1: Definitely. तो हजरत अमीर खुसरो ने इसका इस सवाल को सुना, दोबारा अपने खानकाह में तशरीफ ले गए और वहां जाके उन्होंने एक 12 बच्चों की टीम तैयार की।
0: अच्छा, लेकिन प्रश्न था क्या वर्सेस में?
1: प्रश्न क्या बोले?
0: जो वर्सेस बोला गोपाल नायक उसमें कोई प्रश्न था?
1: यही तो प्रश्न था उसमें प्रश्न था कि सबसे मुश्किल काम था उसको समझना, जो हजरत अमीर खुसरो ने समझा, और इसमें आगे भी जाके बहुत सारी बातें हैं। और वो प्रश्न ये था कि इस बात का जवाब दो कि हमारा गॉड तो ये है, तुम्हारे पास क्या है, जिसकी पूजा करते हो या तुम जिसको मानते हो वो क्या है?
0: ओके, सो दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। दिस वाज वेरी कॉमन इन द कल्चरल स्टोरीज ऑफ इंडिया डेविड, एंड नाउ आई गॉट इट। दिस होल थिंग अबाउट दिस इज लाइक ऑलमोस्ट फ्रॉम दिस जुडाइक ट्रेडिशन, almost, of representatives of different branches and sects of religions having public discussions and back and forth and arguments about, tell me about your gods and your concept of of the cosmic, and you tell me about it, and people go back and forth. This was extremely common in India, all the way from like South India to Kashmir, very common. And you know, that's what he's bringing up. So This is Gopal Nayak with his 9,000 disciples has shown up. All of this has happened. He's read out these questions saying, this is our representation of God. Tell me who your God is. And this is a pretty like a cinematic situation. So Amit Khusro has heard it. He knows Sanskrit. He's understood it. And then the story progresses what happened is that he puts together a team of 12 young men. Is that true? Mustafa ji, 12
1: or no? Yes, 12.
0: So now we are going into how does Amir Khusro prepare to answer this question? And he was sitting behind the curtain. So he's gone and found 12 young men. Huh? And now what happens, Mustafa ji?
1: So Amir Khusro jo the, wo bahut genius the. Unko suro ki taleem thi. Unko pata tha ki ye jo sawal kar rahe hain, ye kis raag mein hai? और मैं जो जवाब दिलवाऊंगा वो किस राग में होगा, वो किस सुरों में बना हुआ होगा, किस तरीके से मुझे इनको जवाब देना है, जो जिस सवाल का जवाब लेने के लिए आए हैं। अच्छा जी,
0: तो हजरत दिस ब्यूटीफुल स्टोरी, नाउ आई एम गेटिंग इट। सो द 28,000 वर्ड वर्स इज एक्चुअली सेट टू म्यूजिक इन अ सर्टेन राग, अ सर्टेन ताल, इवन दो इट्स अ क्वेश्चन, इट्स आल्सो अ कंपोजिशन व्हिच इज ब्यूटीफुल। So now he has understood all that. He's understood the tala and the raga and the words, and he's gone back and he's preparing his response in his choice of raga. This is now Amir Khusro ji in his choice of the rhythm and tala. Mustafa ji, ये 12 young men को लेके थोड़ा सा बोलिए, क्यों कर रहे हैं अमीर?
1: मैं बताता हूँ क्योंकि पंडित गोपाल नायक अपने 9,000 चेलों के साथ तशरीफ लाए थे, तो हजरत अमीर खुसरो ने 9,000 की जगह 12 बच्चों से जवाब दिलवाना उचित समझा।
0: He thought he will be able to answer this question in his own raga and tune and rhythm with only 12 young men. He doesn't need 9,000.
1: Yes. And उसमें उन 12 बच्चों के अंदर जो सबसे बड़े थे और जो सबसे ज्यादा तरबियत याफ्ता थे, उनका नाम था सामत बिन इब्राहिम।
0: So the oldest of the 12 young men is Samat Il Ibrahim, who is the most talented one and the oldest.

0: उसके बाद मुस्तावा जी,
1: और वो सामद बिन इब्राहिम मेरे फोर फादर हैं, अभी
0: ओ
1: अभी से लेकर 850 साल तक पहले तक।
0: सो दिस इज मुस्तफा जीज अबू जीज फोर फादर सामत अल इब्राहिम, हु
1: सामद
0: वाज
1: बिन
0: इन
1: इब्राहिम।
0: दिस ग्रुप ऑफ 12 यंग मैन चोजन बाय अमीर खुसरू। एक बात बताइए मुस्तफा जी, ये
1: जी
0: 12 भी ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के फॉलोअर्स हैं?
1: जी बिल्कुल जी
0: ओके, दिस
1: बिल्कुल
0: इज फ्रॉम द निजामुद्दीन औलिया ग्रुप हु आर ऑलरेडी वर्स्ड इन कवाली एंड म्यूजिक एंड रिदम एंड ट्यून्स एंड रागस। ही इज
1: डेफिनेटली।
0: बेसिकली चूजिंग द रॉक स्टार्स ऑफ द रॉक स्टार्स फ्रॉम द सूफी दरगाह ग्रुप, द क्रेम डेला क्रेम, एंड द एल्डेस्ट एंड द मोस्ट सीनियर डिसाइपल दैट ही चूजेस आउट ऑफ दिस 12 इज हिज एंसेस्टर। ठीक से बोला ना मुस्तफा जी?
1: जी
0: बोला ना?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्या बात है सर।
0: मैं तो लाइव ट्रांसलेट कर रहा हूं।
1: दे आर द फर्स्ट कवाल इन द वर्ल्ड एंड दे कॉल्ड कवाल बच्चे
0: दिस
1: बिकॉज
0: इज द फर्स्ट कवाली ग्रुप इन द इन इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री एंड दे आर कॉल्ड द कवाल बच्चे, मीनिंग द बेबी कवाल्स।
1: बेबी बेबी कवाल, द कवाल बच्चे एंड द फर्स्ट कवाल एंड दे गॉट द टाइटल द कव्वाल बच्चों का दिल्ली घराना।
0: दिस इज द दिल्ली घराना, दिल्ली, यू नो दिल्ली, डेविड, यू नो घरानाज बेटर देन एनी ऑफ अस। सो दिस इज द कवाल, दिस इज द दिल्ली घराना ऑफ द कवाल बच्चे। सो दे आर, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली घराना ऑफ कवालीस। दैट्स हाउ दिस इज हैपनिंग।
1: डेफिनेटली डेफिनेटली। तो वहां से 12 बच्चों को ले जाकर दरबारे खिलजी में खड़ा किया गया, सिखा कर समझा कर कि उनको क्या पेश करना है, उनको क्या परफॉर्म करना है।
0: And then they are taken to the court by Amir Khusro ji, who has prepared the response with the tune, with the raga, with the rhythm, and these 12 kids, young men, with their leader Amir Khusro ji, have now gone back to the court of Alauddin Khilji.
2: Still behind the curtain?
1: No, not behind the curtain.
2: Okay.
1: Not this time, because
0: Not this time.
1: he wants to listen the question in behind the curtains, but he wants to answer in
0: In
1: over the
0: front.
1: curtains.
2: Okay.
1: बिकॉज कर्टन के पीछे से सुनना यूं था कि हजरत अमीर खुसरो उनके मर्तबे को, उनके मकाम को जानते थे कि वो बहुत बड़े साउथ के एक आर्टिस्ट या पंडित हैं। तो अमीर खुसरो नहीं चाहते थे कि मैं किसी भी तरीके से उनकी कोई बेइज्जती या कोई भी उनको छोटा दिखाने की कोशिश करूं, इस वजह से मैं पर्दे के पीछे सुनने की कोशिश कर रहा हूं।
0: So he was showing respect here. That's an interesting. I've never heard this. It's so interesting. So Amir Khusro is actually deeply respectful of this artist slash pandit who's visiting from, and he doesn't want to slight him in any way by showing that he's alone listening to him. So as a show of respect, he had put this curtain so that
1: Definitely.
0: Gopalji would not know exactly how many people he's singing for. This is all very interesting. This is like an incredibly interesting music history based on a mini conflict happening in a court, right? This is just an amazing, हाँ बोलिए सर, मैं बोल रहा हूँ मुस्तफा जी, ये
1: सर मैं आपकी बात
0: amazing
1: बहुत एंजॉय कर
0: story
1: रहा
0: है।
1: हूं, मैं
0: हाँ
1: आपकी बात बहुत एंजॉय कर रहा हूं जो आप ट्रांसलेट कर रहे हैं ना सर। आप यकीन कीजिए कि वो ट्रांसलेट करने में मुझे बहुत, सुनने में बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहा हूं बहुत।
0: अगर मैं कुछ गलत बोला फिर आप
1: नहीं नहीं नहीं
0: कह चलिए।
1: आप गलत बोल ही नहीं सकते।
0: He's trying to give me a compliment, saying that he's enjoying listening to me translate for you.
2: You are doing a good job. Yeah.
0: बोलिए उसावा जी, उसके बाद
1: और दैट्स द एडिकेट्स ऑफ खानका अदब।
0: खानका, यानी कि उसके मतलब क्या होता है?
1: खानका यानी कि स्कूल ऑफ मेडिटेशन, स्कूल ऑफ लव, स्कूल ऑफ मतलब कि उसमें सूफीज्म को सीखने की जगह।
0: तो ठीक है, मैं ये ट्रांसलेट करूंगा। तो आप बोल रहे हैं कि ये 12 लड़के को लेके आए ट्रेन के,
1: जी
0: हाँ उसके बाद
1: जी
0: बोलिए।
1: उसके बाद ये वहां पर आए, वहां पर आके जो सवाल किया था पंडित गोपाल नायक जी ने, उसके जवाब में हजरत अमीर खुसरो ने इनको एक चीज याद कराई जो कि कुरान के लफ्ज में थी। कुरान में आयत आती है कि सुबहान अजल मुल्क वल मलकूत, सुबहान अजल इज्जत वल अजमत वल हैबत वल कुदरत वल किबरिया, wal jalal wal jamal wal kamal wal jamarut subhan al malik al mabud subhan al malik al maqsood subhan al malik al mawjood subhan al malik al hayy alladhi la yanam wa la yamut wa la yafut abadan abada. That's a long ayat, but in a short, jo pandit gopal nay ji ne sawal kiya tha ki mera jo god hai wo शेर की सवारी करता है सुदर्शन चक्र और वो ब्रह्मास्त्र यूज करता है और वो यूं करता है वो यूं करता है. तो उन्होंने उनकी आ, आ, उनकी चीजें बताई कि मेरा गॉड इन इन चीजों पे चलता है या पानी पे चलता है या आग की सवारी करता है या सूरज देवता है. तो हजरत अमीर खुसरो ने उसका जवाब ये दिया कि मेरा गॉड जो है वो इन किसी चीजों का मोहताज नहीं है.
0: मोहताज यानी कि क्या होता है मतलब?
1: डिपेंड.
0: Okay, so he is now, Amir Khusroji is quoting certain verses from the Quran in response, which he quoted, Mustafa ji quoted, and he is totally changing the framework. He said, your God rides on water and does this with fire and rides on air and all the stuff that goes on. My God does not do any of that, you know, something like that, which I don't know Arabic, David, so I can't translate the Quranic verses he quoted. Uske baad,
1: He doesn't need to do that.
0: And he doesn't need to do that.
1: और मेरा गॉड जो है वो इन सबको बनाने वाला है.
0: My God makes all these gods.
1: Yeah.
0: Okay. It's like a meta god. He's like up level the conversation.
2: Right, yeah. Right. He doesn't ride. He doesn't need a tiger.
0: He doesn't need it. He's one level above. Yeah. Yes.
2: He made the mountain.
1: Definitely, definitely. तो जब ये सवाल उन्होंने किया और जवाब अमीर खुसरो ने दिया तो उसके बाद पंडित गोपाल नायक उनके बहुत गर्विदा हो गए, बहुत उनके अदब में आ गए और उनके उनको बहुत पसंद करने लगे अमीर खुसरो को.
0: सो गोपाल नायक वाज रियली हैप्पी एंड इम्प्रेस्ड टू हियर दैट एंड रिवर्ट्स विद अ लॉट ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट फॉर अमीर खुसरो जी. एक बात बताइए मुस्तफा जी, ये जो कुरानिक वर्सेस जो कोट किया अमीर खुसरो जी, ये भी कुछ संगीत में था ना, कुछ रागा में था, ताला में था. So that itself is totally unique, David, because in the Middle East this is not true. It was not set to rhythm and music. So here not only is he quoting the verses, it is all, I mean, it's unclear. Mustafa ji, आपको कुछ पता है कि कौन सा रागा कैसे ताल कैसे सुर में होता था?
1: इस राग को इंडियन क्लासिकल मौसिकी में राग खट कहा जाता है.
0: खट. ओके.
1: खट
0: खट
1: खट.
0: सो दिस ही हैज पिक्ड दिस रागा कॉल्ड रागा खट. और हाँ बोलिए.
1: या तो उन्होंने जो जैसा सवाल किया वैसे इन्होंने जवाब दिया कि वो सुभान ज़िल मुल्क वल मलकूत सुभान ज़िल इज्जत वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल किबरिया वल जलाल वल जमाल वल कमाल वल जमरूत सुभान अल मलिक अल माबूद सुभान अल मलिक अल मक्सूद सुभान अल मलिक अल मौजूद.
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है.
1: थैंक यू. तो ये जो है ना वो ये किसी तीन ताल या एक ताल या किसी टेम्पो की बीट में नहीं है. इसको इंडियन क्लासिकल मौसिकी में तितब्बो कहा जाता है.
0: हाँ,
1: तितब्बो.
0: ओके, दिस आई डिडंट नो, दिस इज बियॉन्ड माय डेप्थ डेविड. सो दिस इज सेट टू राग खाट, बट द रिदमिक फॉर्म इज कॉल्ड कितब्बो और तितब्बो, व्हिच आई हैव नेवर हर्ड.
1: या तितब्बो
0: इज नॉट सेट टू स्टैंडर्ड स्टफ लाइक दादरा और कहरपा और तीन ताल और एक
1: तितब्बो. उनको समझाएं कि तितब्बो जो है वो बोल के साथ ठेका चलता है.
0: Oh wow, so this is interesting, this is almost African. So what he's saying is that this rhythmic structure, this thing is, the rhythm is following the lyrics. So it is based on the meter of the, so it's based on the iambic, on the standard version of the verses itself. On the vowels of the music. Concept.
2: Yeah.
0: Right?
1: Definitely. So yahan se इस जगह से कव्वाल का आगाज हुआ, कव्वाल बना और कव्वाल लफ्ज चार चीजों पे मबनी है.
0: सो दिस इज हाउ the rhythmic structure. So it's almost like rapping, David. It's coming from the poem and the verses itself, from the meter of the poems and the actual endings and how it's broken and how the poem has to be communicated. And the rhythm is emanating from the poem itself rather than following a predetermined cycle on the way it was written. And then he's saying that the structure of the Qawwali that is coming out from this tradition from that time is based on four principles. Boliye, yes. What are the four?
1: First is a say. Second is a saying. Third is a sayers.
0: Okay, thoda sa dheere dheere boliye. Pehle wala.
1: Pehla hai kul.
0: Kul.
1: Kul. Arabic ka lafz hai kul. Dusra hai call.
0: So first principle is called kul in Arabic. Uska matlab kya hota hai kul ka?
1: Kul kaha.
0: Kul kaha yani ki?
1: Kul ka matlab kaha.
0: Oh, kaha meaning?
1: Kaha.
0: Meaning saying.
1: Saying. Saying, definitely.
0: First is kul, which is saying. And the Urdu Hindi word is
1: yeah.
0: Kaha. Second Arabic word is khawl. Or khawl ke matlab kya hota hai?
1: Kehne wala.
0: The one who is saying. The sayer, David.
1: Kul ka matlab hua, kaha, saying.
0: Saying.
1: Call ka matlab hua, kaha hua. Kisi ka kaha hua.
0: Oh, one, that has been said already. Okay. Okay, call. And teesre wala.
1: And the third one is kawal.
0: Kawal, okay.
1: Kehne wala.
0: The one who is saying, the actual kawal. That's the third one.
1: Kehne wala. And the fourth one is qawwali.
0: Okay. Uska matlab kya hoga?
1: To uska kul, matlab ye.
0: Kul, qawwal, qawwali.
1: Kul, qawl, qawwal, qawwali.
0: Wow.
1: Mujhe lag raha hai aap sar mein dard ho gaya aapka.
0: He's saying that I've never translated this, so I don't know exactly how to translate it. It's beautiful. All of them are starting from the same root, David. Kul, kaul, kawal, kawali. Okay, I'll leave it as an exercise to translate exactly what those four are, but we kind of get the sense, right? The interesting comment he made, kul, kawal, kawali, I think we get. The kaul is that what has been said. That part is like unique to me, that I've never heard before.
2: Can you repeat that? The kul,
0: kaul,
1: kul,
0: number one,
1: kaul, kawal, kawali.
0: Four is
1: kawal. I am the kawal.
2: You sing. You're the singer.
1: I am the kawal, and you are the listener. You listen the kawali. That's the four means of these four words. And is tarike se kawal ka janam hua aur kawal wujood mein aaya.
0: So, Mustafa ji, kawali ka formal jo structure jo ne aap bola, jo principle bola, kul, kaul, kawal, kawali, ye iska ghara, lineage trace ho raha to Amir Khusru's
1: Abu Muhammad sahab ki, sorry, I interview, inki shayad message aa raha hai ke how can I join?
0: He's trying to join.
2: Yeah,
0: The way Mustafa ji jaise chal raha hai aapke saath, itna badhiya baatchit, ab to do teen ghanta chalega ye.
1: Bilkul
0: his dad is trying to join, David.
2: I know. Yeah, but I've been texting him.
1: Yeah, aap karwa di. Inse boliye ki aap karwai, wo unka shayad work nahi kar raha hai wahan par.
2: It's not going to be easy cuz he has Yahoo.
1: Kya uski application download karna zaruri?
0: Nahi, uska email Yahoo ka email hai na.
1: Ji.
0: Agar Google ka mail hua, fir koi musibat nahi hota.
1: Unka koi Yahoo hai.
0: Ye to mushkil hai na, uska unka koi Gmail nahi hai na.
1: Ji.
0: Ah, man.
2: That's
0: amazing that his dad is trying to join. I think, David, this would have been your longest interview in recorded history.
2: Let's say we'll set up separate interview with him. We're not going to get him.
1: I think that's good.
2: Yeah. We set up interview.
0: I think we should try to get Mustafa ji also, because having him makes a huge difference, because I am able to like interact with Mustafa ji in English and ask him.
2: Yeah.
0: right? So if he has time, I know that he's also very busy. He's also performing.
2: Yeah, I don't think this is gonna ever work. Right?
0: No, no.
2: Okay, right, so now, let's keep going.
0: Okay. Okay.
2: Yeah, it's not gonna work, right? No way. He's good. He said we'll do another time with Abu. Okay, so back to the story.
0: So Mustafa ji, फिर क्या हुई वो जो अमित खुसरो जी और गोपाल नाग के इंटरेक्शन वो हुई ये लोग ये अमित खुसरो जी और ये 12 बच्चे गाए ये वो रात ठट में फिर
1: उसके बाद ये कव्वाल बने कव्वाल प्रोड्यूस हुआ यानी कव्वाल बना उन्होंने हजरत अमीर खुसरो ने अपने टीचर अपने गुरु की इजाजत से कव्वाल दुनिया को बना के दिए 12 बच्चे उसके बाद ये 12 बच्चे दुनिया के अलग अलग रीजन्स में पहले जैसे कि मेरे फोर फादर वो उधर ही दिल्ली में रहे हजरत सामद बिन इब्राहिम वही उसी जगह पे रहे वही उनकी कब्र भी है और वहां पर तमाम हमारा पूरा शिजरा भी वही जाके मिलता है और बाकी लोग कोई जी
0: एक बात बताइए मुस्तफा जी आप एक बात बोले कि आपका लीनियज ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती से आते हैं
1: जी
0: लेकिन आपका जो एंसेस्टर का नाम आप बोला हु वाज इन द ग्रुप ऑफ 12 इनके रिलेशनशिप निजामुद्दीन औलिया से थे या ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती से थे
1: मैं बता दूं कि ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती पहले आए थे निजामुद्दीन औलिया से अप्रोक्सीमेटली 300 to 400 ईयर्स पहले आए थे
0: इतना साल पहले
1: जी बिल्कुल ये एक सिलसिला है जिसको चिश्तिया सिलसिला कहते हैं
0: चिश्तिया सिलसिला
1: कहते हैं ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती चिश्त एक एरिया है अफगानिस्तान में खुरासान में वहां से तशरीफ लाए थे तो वो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती कहलाए
0: सो द स्टोरी इज सो हियर इज हाउ आई अंडरस्टैंड इट Mustafa ji's ancestor, who was the senior most of this little bachches, the young disciples who formed this first Qawwali group of the Delhi Gharana. Okay.
2: Baby Qawwali.
0: Huh?
2: Baby Qawwali.
0: Of the babies. He actually, even though he's now part of the Nizamuddin Auliya Sufi Dargah and that group led by Amir Khusro ji, himself 300-400 years before, his ancestor is Mohiuddin Chisti, who was the original Sufi saint, who came from an area called Chisht in modern-day Afghanistan. That's why I was asking that, because he started the story saying that his family comes from the Khwaja Mohiuddin Chisti lineage. But what is happening now is the ancestor, unke naam kya tha, shubh naam kya tha?
1: Samad bin Ibrahim.
0: Huh. So the young gentleman, Sawad bin Ibrahim, who's part of the first Qawwali band, is actually now a disciple of Nizamuddin Auliya because of his leader, Amir Khusroji, which is interesting that even though this family has come from Mohiuddin Chisti's lineage, now they are part of the Nizamuddin Auliya saint group of the Sufi group. So yeah, I did not know.
2: And for our listeners, just to be clear, the family we're talking about is Mustafa Abu Muhammad's family.
0: Mustafa Abu Muhammad's ancestor is the senior most member of this young men, the Bachche Qawwalis, created by
2: Amir Khusroji
0: as part of this story around the interaction with Gopal Nag. So it's a very interesting, story about how things came together.
2: Yeah.
0: Right? And then these 12 students are sent off by Amir Khusroji to different parts of the world to propagate this music and this practice. But his ancestor, Samad al-Ibrahim, stays back in Delhi and does not travel. He stays there with Amir Khusroji and actually his qabr, his cemetery, his burial place is in Old Delhi. It's still there. Mustafa ji, aap kabhi gaye hain wahan?
1: Ji, bilkul, main gaya hoon.
0: So he has been to Delhi, even though Mustafa ji lives in Karachi, Pakistan. his ancestor, who was the original disciple of Amir Khusroji, follower, his